0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदा दु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नुनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबा वायर बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाहि।
3: टेक के दुनिया अंग अलगन में कुम्मे हफ्ता को मिकुरा दतुरुता निमे दुआ मरा क्या वेजे। अलगन में कुरा कुम्मे दतुरा की मे दतुरुता निमे दुआ अलगन में ना बदल वा दुस गै को दे दतुरुता के। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफुनी तक उनके नमन दा बदल तक बलानुला दूर कोल मकी कुरम बाण वरुगे कमेनो मैं हफ्ता खास टेक के एम में फाउगे खबर तं अडवा हाला ती ऐहुन तेरी तैयार तो मैं हफ्ता के खबर तक काय की उस पर दल कुरानी मुसारश्वान
4: खबर

ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा।

0: अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: हर चीज करो लिमिट के अंदर, लेकिन प्यार लिमिट के बहुत बाहर।
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया।
3: दुकानपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज। आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
4: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
5: Hi, I'm Anjali.
6: I'm married. I mean, Vinay Malhotra.
7: आज जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
1: Happy anniversary.
0: पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया।
1: ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। अब जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
0: आशु नो बदमाशी।

0: I need a visa to get to Udaipur.
1: आपको उदयपुर जाना है, हम आपको उदयपुर ले जा रहे हैं. अब इस बीच में आपको भीड़ जला देखनी.
2: Yes.
3: Jia.
2: Yes.
3: You know I love you, right?
2: Yes.
3: मैं शादी नहीं कर सकता.
0: कोई देख लेगा.
4: रे बावली, कौन क्या देखेगा? आज तक मन ने कुछ ना देखा. प्लीज आज ना रोक.
0: कौन है ये बाबू?
5: राहुल, कामिनी के बचपन का प्यार.
3: हमारा घर जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे. लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है ना आने वाला.

0: he marries someone else, I'll kill myself.
1: इसकी जुबान नहीं समझता तो क्या गया? इसकी आंखों की भाषा तो समझता हूँ। इसे कह दो कि राजू इसको इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।
2: शादी के 15 साल में तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ खो दिया? वो प्यार, वो एहसास, वो एक्साइटमेंट, कहाँ है वो सब? कहाँ है सीमा?
3: शायद वक्त बदल गया विनय, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ।
4: और अगर आज राहुल कहे कामनी आई लव यू,
5: शिवेन, प्यार हर वक्त साथ रहता है, क्योंकि प्यार वक्त से नहीं उससे किया जाता है जिसके साथ वक्त गुजारते हैं।
6: सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिया।

विदाल वाश हम कशवरु तिमम्मेन्नी खलेगिवेरी रसखलांगे फोनुवि दे रसूलुने फहे तिमम्मेन्ना एकुगा इस्राईल गे दरिम फोनुवाश आदि एवरेन्न खले आजाबनु देश हम कशवरु खलेग गात तिमम्मेम्मेई खलेगे वेरी रसखलांगे हजरतुम्वा मुअज्जिजा तकाएगेन्ने तेदुमगत तबावे जमीह का सलाम कम होते।

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? म्योती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबा वायरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उड़े कर नुचे है ने। कुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है।
3: टेक के दुनिया अंग अलगन में खुम में हफ्ता आ कु मिकुरा दातुरु तन निमे दुआ हा मरा क्या वेजे। अलगन में कुरा खुम में दातुरा की मी दातुरु तन निमे दुआ हा अलगन में ना बदल वा दुस गैक को दे दातुरु तके। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कंफर्नी तक उनके नमन दां बदल तक का बालानोला दूर कोल मकी कुरम बाणे वरुगे कमेनो मैं हफ्ता खास टेक के एम में फाउगे खबर तं अडवा हाला ती ऐ हुंते निता यार तो मैं हफ्ता के खबर तक काय की उस बदल कुरानी मुसारश्वान
4: खबर

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे राज्य क्या डूं
1: हिब्बरा उम्मी
3: मैं मुबारा तुम आलोगन अंग आता जुड़ी बात है का आ माउदू मात तक आलोगन इंगें दान का मुझे फोनी उम्मीद होगा
4: मैं होरी नियक कंडरा लाके तब मैं गंदे वे मुकुरिया का दान हम
3: हितंगेरी मैं फर बैरु आनी है वाने लिबुना स्नोल बुना स्लिबे था जुड़ी बाए की आलोगन देखे को तो कबारा बड़ो इच्छा
5: बेस्ट रेडियो प्रेजेंटर कंपटीशन के टाइटल उफलाला बैवरिया की
1: रेडियो प्रोग्राम हुशल में शौगर वफरात का खास को गेंद दिवे राज्य गणों को लेकर दा रियलिटी शो
6: फाही पे प्रेजेंट
7: बेस्ट रेडियो प्रेजेंटर कंपटीशन
5: हुकुरु आदि होने हिर दुहोगे मिंदुरु दे चहायरो
1: रिपीट हुकुरु आदि होने हिर दुहोगे रेगंडो दिए गड़ी तेरी
5: एंगा सतर सते का सारिस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्टी है नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
1: फाइपे प्रेजेंट्स बेस्ट रेडियो प्रेजेंटर कंपटीशन मी मुबारात के को स्पॉन्सर की होलसेल पॉइंट एंगा सतर से का सारिस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
8: दिवे राज्य के अड्डू